0: Radio NRN 99.1. समय को ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहस का साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिसोम फाइबर नेट।

0: पटियाला वाला नीमराना
1: पर नीमराना तो एक ही है।
0: चल जल्दी चल।
2: अरे आजा जल्दी यार।
1: पर नीमराना तो
3: चलो चलो, चलो।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ आना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी।

0: World Link को festivity offer अब pound host एक वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set top box मात्र रु 1200 प्रति महीना में सर्तहरू लागू होने चाहिए छिटो बने गई World Link
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आव

0: दमोली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्निचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टि रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 05, 98 19 11 36 27, 65 65।

0: DFM 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्निचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई? हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडि पट्टि रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 0 56 05, 98 19 11 36 27, 65 65 0 25।
4: हेलो
5: हेलो बहिनी।

दमौली डायरी में मंदिरा सिडाई को नमस्कार। सुरुमा समाचार का प्रमुख शीर्षक। दूध बिक्री मासिक 2 करोड़ रुपया आमदानी। एआई एक्सरे परीक्षण 23 जना में क्षयरोग पहचान। तनहुका सबै पालिकामा मगर भाषाको पठन पाठन विस्तार गरिने र मलेसियामा 16 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध।